0: दुकान
1: तोमर रोशन और आप सुन रहे हैं प्रॉग कोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।
2: Prog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.